0: டியூப் போட்டு எடுக்கிற மாதிரியும் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுக்கு வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாடர் அந்த நீர்ப்பையை வந்து நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் வந்து பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸ் எப்போதுமே. அது எப்படின்னா நம்ம ரேடியோ தெரப்பி, கீமோ தெரப்பி இதெல்லாம் கொடுத்து அதை கட்டுப்படுத்தி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. முடியாத பட்சத்தில் தான் இந்த மாதிரி அதை எடுக்க வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ முக்கியமாக வந்து ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணுங்கள், டாக்ஸிக் அனல்ஜெசிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். டாக்ஸிக் ஃபுட்ஸ், நிறைய டாக்ஸின்ஸ் இருக்கிற ஃபுட்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலே இந்த வியாதியை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். நன்றி.
1: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது நலமாய் வாழ.
2: இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறுநீர் பையில் வரக்கூடிய கேன்சர் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மையத்தின் சிறுநீரகவியல் துறை தலைவர் டாக்டர் கே சுதாகர் அவர்கள்.
3: நேர்களே, இன்னும் சற்று நேரத்தில் BWF உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026 தினசரி நிலவரம் டெல்லியில் இருந்த அஞ்சல்ஸை கேட்கலாம்.
4: अजीब है ना, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब पीछे छूट जाने का डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये दिखाई भी नहीं देता कि हम खुद कितनी दूर आ चुके हैं. कल तक जिसे पाने के लिए पूरी जान झोंक दी थी, आज वो उपलब्धि छोटी लगने लगती है. शायद तरक्की की यही पहचान है. आज भारतीय बैडमिंटन ठीक उसी मुकाम पर खड़ा है. 2009 में जब भारत में आयोजन हुआ था प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो 19 वर्षीय साइना नेहवाल पदक के लिए भारत की एकमात्र उम्मीद थी. वो भी दावेदारों की पहली कतार में नहीं थी. प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद की कहानियां बीते कल के किस्से लगते थे, लेकिन आज 2026 में जब ये कारवां लौट कर भारत आया है तो उम्मीदवारों की एक लंबी श्रृंखला है. इसीलिए तो इस टूर्नामेंट के पहले दिन सोमवार होने के बावजूद अच्छी खासी संख्या में बैडमिंटन प्रेमी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे. और फिर कोर्ट पर जो नजारा देखने को मिला वो दर्शकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था. भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने किया एक ऐसा उलटफेर जिसे देख पूरा विश्व चौंक गया और भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे. 21 वर्षीय आयुष ने एक कश्मकश भरे मुकाबले में रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी यू की को मात दी. आयुष का मैच पॉइंट स्कोर करते ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मानो जोश का एक विस्फोट हुआ. कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं. फरवरी 2025 में 19 वर्ष की आयु में पहली बार आयुष शेट्टी का सामना शियुकी से हुआ था इंडोनेशिया ओपन में, और उस टूर्नामेंट में भी आयुष ने शियुकी को एक कड़ी चुनौती दी थी लेकिन उनको हरा नहीं सके थे. लेकिन इस बार अपनी गलतियों से सीख पूरी तैयारी के साथ आए थे आयुष, ऐसा उन्होंने कहा.
5: Today, the last time we played, I think he outplayed me on all aspects of the game, but I think today I was super prepared.
4: मैच के दौरान आयुष को चोट भी लगी, उंगली से खून भी बहने लगा. जब कोर्ट साइड डॉक्टर को उन्होंने बुलाया तो फैंस चिंतित हुए, लेकिन आयुष ने मैच के बाद इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी.
5: I think I was bleeding on my finger, so I had to come medical. I think nothing serious.
4: आयुष के हर स्मैश, हर ड्रॉप शॉट, हर पॉइंट जीतने पर गड़गड़ाती हुई तालियों से जब स्टेडियम गूंजता तो उससे उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती.
5: The crowd was really, you know, behind me and was giving me the energy. I was so bit tired, but I think the crowd cheering like that, I think gave me a lot of energy.
4: ऐसा ही कुछ पुरुषों के डबल्स वर्ग में अपने जोड़ीदार हरिहरन अमसा करुणन के साथ पहला मुकाबला जीतने पर एम अर्जुन ने भी कहा.
6: बहुत अच्छा था. कोर्ट के अंदर जाने से पहले वी डिडंट नो, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्राउड आएगा. हम लोग का नाम अनाउंस करने के बाद क्राउड चिल्लाना शुरू किया, देन बूस्टेड अस. I mean, हम लोग को, especially when the क्राउड पीछे है तो हम लोग को बहुत एनर्जी और वो बूस्टअप मिलता है हर एक पॉइंट के बाद. अगर पॉइंट गया तो भी दैट चीयर एक्चुअली हेल्प्स अस. एंड देन वो फर्स्ट विन मिलने के बाद

0: अर्जुन और अमसा करुणन के सामने आयरलैंड से आने वाली स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स की जोड़ी थी जो मैच के दौरान चोट के चलते रिटायर हो गई। हालांकि उससे पहले भी मैच में भारतीय जोड़ी का दबदबा कायम था। इसके चलते अमसा करुणन और अर्जुन राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस वर्ग में गोल्डन बॉयज की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को बाय मिला है। वो भी राउंड ऑफ 32 में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं महिलाओं की। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी स्पॉटलाइट पीवी सिंधु पर होने वाली थी। राउंड ऑफ 64 में उनके सामने आयरलैंड की सोफिया नोबल की चुनौती कोई खास कड़ी नहीं मानी जा रही थी और कोर्ट पर भी वही देखने को मिला। सिंधु ने दो सीधे सेटों में आयरिश प्रतिद्वंदी को मात देकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई, लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि वो इस अपोनेंट के खिलाफ पहली बार खेल रही थी, उन्हें सतर्क रहना था और साथ के साथ कोर्ट की कंडीशंस को समझने के लिए ये मुकाबला बेहद जरूरी था।
1: ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग विद हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई डू एंड व्हाट आई प्ले एंड हाउ आई प्ले। आई मीन आई वाज एक्साइटेड टू गेट ऑनटू द कोर्ट हैपनिंग हियर इन इंडिया, सो इट वाज रियली गुड टू यू नो गेट ऑनटू द कोर्ट एंड आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल चीयरिंग एंड सपोर्टिंग मी। आई थिंक दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best. It was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out how it is and what it is. It's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but like sometimes, you know, when you actually get onto the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well and the court conditions are pretty good.
0: Sindhu, BWF World Championships 2026 में भारत के लिए पदक की एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन सिंधु का कहना है कि वो अभी उतनी दूर तक की नहीं सोच रही हैं और उनका फोकस अगले मैच पर है।
1: मेडल तो काफी दूर है, अभी मेरे लिए बस एक मैच एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम एंड मैं बस हर एक मैच में अच्छा खेलना है, 100% देना है और अभी फर्स्ट मैच हुआ है, यू नो आई नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच एंड इट्स जस्ट वन मैच एट अ टाइम फॉर मी, सो आई जस्ट हैव टू गिव माय बेस्ट।
0: जहां एक तरफ पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीत चुकी दिग्गज सिंधु है, तो दूसरी तरफ कुछ युवा खिलाड़ी भी भारत का प्रतिनिधित्व इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं। युगल वर्ग में कावी प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही है। उन्होंने भी शानदार शुरुआत करते हुए स्पेनिश जोड़ी को दो सीधे सेटों में मात दी। मैच के बाद सिमरन से हमने जानने की कोशिश की कि कोर्ट की कंडीशंस किस प्रकार है।
2: फर्स्ट टाइम है और सब क्राउड हमारा है एंड स्टार्ट में थोड़ा डिफेंसिव स्टार्ट किया, कोर्ट कंडीशंस थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था बिकॉज एक साइड से इट्स वेरी स्लो और बाकी फास्ट है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग गया एंड वी वर प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। देन आफ्टर 10-12 पॉइंट्स वी चेंज द गेम, हमने डिसाइड किया हम ऑल आउट अटैक करेंगे एंड यू नो वी आर गोना कीप इट डाउन, एक जन आगे जाके कीप करेगा और अटैक करेगा, तो हमने एंड में गेम चेंज किया, वी वर डाउन बट बहुत लेट चेंज हुआ सो बट देन लेटर वी कैच इट ऑन एंड वी विन द मैच।
0: युगल वर्ग में ही चोट के बाद वापसी कर रही ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। ट्रीसा की चोट के चलते कुछ अहम टूर्नामेंट्स में ये जोड़ी शिरकत नहीं कर पाई थी, जिससे काफी मायूस और हताश थी।
3: I think obviously it's sad missing so much of tournaments and our rank also went a little bit down. I think those situations it was, I was mentally preparing for that, I just need to recover and just come back and play. And obviously these kind of prestigious tournaments after the injury I am playing and it makes me more feeling more happy and so excited.
0: लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरजोर वापसी की है। गायत्री के पिता और कोच पुलेला गोपी चंद कोर्ट साइड पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में स्पेनिश जोड़ी को 21-9 और 21-13 से इन दोनों ने मात दी। हाँ, भारतीय प्रशंसक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी हौसला अफजाई करते रहे, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिला और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला।
4: इट्स अमेजिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया, यू नो द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, वो भी तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है और हाँ बहुत अच्छा था फर्स्ट गेम, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं।
0: चोट से उभरने की कहानी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर वन आंसे युंग की भी है। दक्षिण कोरिया से आने वाली इस खिलाड़ी ने बैडमिंटन के हर एक खिताब को अपने नाम किया है। सोमवार को राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में आसान सी जीत भी दर्ज की, लेकिन युंग का कहना है अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है। उसके बावजूद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने देश का परचम लहरा

0: जाने का उनका जज्बा है जो उनको यहाँ लेकर आया है.
1: Yeah, I'm so happy to be back. I tried to get into rhythm back, still need more recovery.
0: और मंगलवार को भारत का तिरंगा ऊंचा लहराने के उद्देश्य से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में अपने सफर की शुरुआत करेंगे लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा. साथ के साथ भारतीय फैंस की नजर मिक्स डबल्स पर भी होगी, जहां ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को तो बाय मिला है, लेकिन आसिफ सूर्या और अमृता प्रथमेश और रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े की जोड़ियां राउंड ऑफ 64 में अपना पहला मुकाबला खेलेगी. प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ दर्पण टीकिया और मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट.